वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए, जिस दिथे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निदयावे ताए, सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह।

रात दिवस रात तो दाई दाया खेले सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म अधूरा।

इतनी हाजरी प्रवान कर ली फुल चुक की खिमा सुभाव हूँ आप जी सत्कार जो रागी भाई सरबजीत सिंह लाडी श्री दरबार साहब वाले 7:30 बजे तक कीर्तन द्वारा निहाल करे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। श्री अंगद गुर ते अमरदास राम दासी हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नव सिमरऊ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस जिथे सब दुख जाए। देख बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताए। सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। धन धन।

तहर बोले सो निराल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

पंचवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौकड़ मारे राम नाम लगा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरे सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरुष विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव ना बिरथी जासी आनंद करे तेरे दासा जप पूरन होई आशा बिलावल महला पंजवा ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई चौकी चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम अख दिया एकालिव लाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब याद मिटाई

शिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरपो कहा सोहेला हौ वारी जित सोहेला सदा सुख होय रहाओ नित नित जियड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना किमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबल सहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल

सहस मूरत नन एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पाव काल क्लेश तन माह मिटाव सिमरो जास विषम पर एक नाम जपते अगम ते अनेक वेद प्राण सिमरत सदाख्यर किन्ने राम नाम एक आख्यर किन काय जिह जीव सावे ता की महिमा गणी न आवे कांखी एक कै दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिगल न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भाव न ब्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सरमन दान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जब तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा प्रभ कै सिमरन त्रिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब कह सुजै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की भल जाए अमृत नाम रिद माह समाए प्रभ जी बस है साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ कौ सिमरै से तनवंते प्रभ कौ सिमरै से पतवंते प्रभ कौ सिमरह से जन परवान प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरह से बे महताजे प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी प्रभ कौ सिमरह सदा विनाशी सिमर

वार्य बार बिवहता तुरह प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद पयाव प्रसाग सैन मोखे अप्याव बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्स ले हो तव नानक सीजै जे प्रसाद तारु पर सुख बस है सोत प्रात मीत बनता संग हस है।

मन करी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाय हमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जेह प्रसाद शतीह अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जेह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मने अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना जेह प्रसाद

दरस बड़भागी पाइए ब्रह्म ज्ञानी काओ बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

करे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़े भागी किसे प्राप्त होए करण करावने आपे आप सदा सदा नान कर जाव।

सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाव अनक बार गुर काओ बल जाओ सरबिरधान जी का दाताठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं काज परम सहस स्या।

नाम हरवात यहो तन संचो हो भगवान संजना का निर्मल मंते काश राख मन वास सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार खुट उठ सावे

दृष्टा रस्पति आप कथिया सुन ले हार आपे का विस्तार जात पावे ता श्री तू पाए अपने पाने लै सुभाए तुम ते भेण नहीं किस होया अपन सूद सब जगत प्रवे जाको प्राव जियो आ बुझाए सत नाम सोजन पाए सो सुमदर्शी तत गावे ता नानक सगल।

ते हित जब गांव को जाए सब सिर एक नेम जन रवाज जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साध गुण दान बेअंत पार नानक दास दा ब्रिहार पूरन पूर रह दयाल समी उपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो बे आप प्रत पाले जियन बहुपात जो जो रत्यो सुत से त्याग

मन होवत सुख। चिंता जाय मिटे हंकार तिस जन को कोई न पहुंच रिहार। सिर उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी। अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान।

चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे उदार उत्तम।

सेवकनी सेव आल दयाल विकास रहते राम नाम समरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभि खेव हमारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सह

सच सोचाए सोच ना हो भई जे सोची लखवार चुपै चुप ना हो भई जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पाला खोहे ता इक ना चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई

앞에 사다앙가상게야 방강비보테 사트남 스리바이그루 사이브지 에쿠원칼 사드구르 프라사드 파드샤이 다스메이트와 프라사드 스바이에 스라바가 소드 스모스다 한케 데크브리오카 아르조그 자티케 सूर सुरार्दन सुसुदाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो बात कौना देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते एक रति बिन एक रति के माथे मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूपलिप न्याव शीसना जात बिचारे एते पहतो काह पाए भूपतंत को नागे ही पाए पधारे जीत फराय सब देश दिशान को बाज ढोल मृदंगन गारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हंसत ही है राज हजारे भूत भविक भवान के भूपत कौन गरह रे जात बजारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत गुअंत के धाम सिधारे तीर्थ नहान दयादम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जवान सुबान के पेख है पवन आहार जति जत हर सब सुविचार हजार देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रतीबन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंद बास सुसासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर बर पंख लेना हलेंगे तोर अरीर मरोर मुवासन माते मतंगन माल मलेंगे श्री बस श्री भगवान कृपाबिन त्याग जहान दान चलाएंगे वीर अपार बड़े बरियार बचारे सार की तार बशैया तोर देश मिलंद मुवासन माते गजान के माल मलैया गाड़े गडान कुतोड़ नहार सो बातिन जगचार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जा चकने एक सो एक दवैया दानव देव फिनंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जलमय थलमय पल ही पलमय सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जातुन पापन के बा पुंज खपेंगे साध सिम प्रसन्न वरैजक सतर सब अवलोक छपेंगे मानव इंद्र जिंद्र नरातव जौन तलोक राज करेंगे कोट स्नान जातक दान ए अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्मेश्वर बिशन सचिव तंत फसेजम फास भरेंगे जे नार श्रीपद के प्रस है भग तेरना फेरना देह तरेंगे कहा पयो जो धो लोचन मूंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियुरिय सास समुंदर लोग गयो प्रलोक गवायो बास कियो विज्ञान सुख बैठ के ऐसे ऐसे सुबैस बितायो साज गाऊ सुन लिहो सबैजन प्रेम कियो दिनि प्रभायो काहू लै बाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग घरे लटकायो काहू लख रवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निभायो को बतान को पूजद पास को वृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पास को वृतान को पूजनतायो कूर क्रिया उर्जो सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पाशाही दसवीं कबेव बाज बेनती चौपाई अमरी करो हादर अच्छा पूर्ण हुए चतकीशा तब चरणन मन रहे हमारा बना जान करो प्रतभारा हमरे दुष्ट सब तुम गावो आप हाद मोहे बचावो सुखी बस है मोर प्रभारा सेव से सब करतारा मोर अच्छा निज करद करे सब को आसंग रहे पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे व्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन शत्रु हमारे मारिय है आप हाद मुझे उबर है मरण काल का त्रासन भर है ऊजो सदा हमारे बच्चा सरिय तुझू करे ओ रक्षा राख लो मैं राखण हारे साहिब संसाए बियारे दीन बंदुष्टन के हंता तुमो परी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर भिषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दान दर्शन बजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार सीखो हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को बल मोहबत कियो घटर के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचर सूला सफर कृपा दुष्ट कर फूला संदन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के

जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पितर हजूरी जुड़ बैठी साध संग जी वडभागी हो आप जी अमृत वेले तो ही गुरु साहब जी दरबार दी हाजरी भर रहे हो अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे संगतां वल्लों जुड़ के नाम जपिया गया ब्रह्म गुरु पातशाह जी ने सोने तख्तां दे विराज दर्शन दारे बख्शिश किते पितर हुकम बख्शिश किते उपरंत गुरु महाराज की हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पंजा बाणी दे नितनेम होए हन आप जी ने पितर हुकम सरवण किते हन आओ हुण श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन पाशाह सरबजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब जी वाले कीर्तन जथा आप जी नूं कीर्तन राहीं जोड़ूंगे उन्हां पासों प्यार सिखा सरण करो जी आने वाले शुक्रवार हर साल की तरह धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के विआह पुरब दीआं खुशियां विच बिलगा पिंड निवासी संगतां वल्लों शुक्रवार नूं श्री खंड प्रसाद सवेरे 10 बजे प्रारंभ होणगे ऐतवार नूं संपूर्ण तमा ऐतवार दे विशेष दीवान इस संबंध सजणगे आप जी ने हाजरी भरनी है जी

ब्राह्मण है, खत्री शब्द सूर शब्द, खत्री शब्द सूर शब्द, सूद शब्द प्राकृत है, सर्व शब्द एक शब्द जेको जाने पेओ, नानक ताका दास है। सोई निरंजन देव महला दूजा, एक कृष्ण सर्व देवा देव दवा आत्मा आत्मा वास देव जेको जाने पेओ।

0: जाती है हृदय कसुते जाय भला पहला।
1: पाठ पुस्तक संध्या वादन चलबू सबगत समाधन मोक चूट बभूकन सारं त्रेपाल ते हाल विचारं गल माला तिलक ले लाटं दोई तोती वस्त्र कपाटं जय जानस ब्रह्म कर्म सक फोक्स सक फोकर।

सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनायसी हुक्म मने होवे परवान ता कसमे का महल पायसी कसमे पावे सो करे मनु चिंदया सो फल पायसी ता

वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौने दयावे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ जी दार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता। तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए। खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिद्ध के सां सवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पह दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहब। समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटियां दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी दे हजूर उदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां ते प्रकाशमान हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे जाप पांच बाणियां दे नेत्रे मासा जी दी वार दे संपूर्ण कीर्तन होए। उपरंत सच्चे पातशाह जी आप जी वालों बख्शिश मुख वाग दी कथा विचार ते भगत कबीर सिंह वाहिगुरु जी भगत कबीर जी उन्हां दे जन्म दिहाड़े दी सच्चे पातशाह खुशी विच पावन विचारां होईआं ते संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां दे सचखंड गमन दिवस दे संबंध विच सच्चे पातशाह जी उन्हां दे जीवन कौतकां दी कथा विचार होई। सच्चे पातशाह जी ओ कृपा करनी पातशाह जी छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। समुचियां सेवावां निभाउंदिआं होइआं भुल चुक दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी कीर्तन कथा दा भाव आईआं संगतां दे हिरदे ते वसाउणा। सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनियां। दरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी। परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई। चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी। आप जीआं दे भाणे विच रैन सुखां नाल बतीत होई आया दनाब दे भाणे विच बाणी पढ़दिआं सिमरन करदिआं बतीत होवे। सच्चे पातशाह जी अरदास बेनती है संगतां वल्लों। बीबी जसलीन कौर दी सेहत जाबी वास्ते अरदास बेनती। चढ़दियां कला बख्शनियां भाई जगतार सिंह उन्हां दी सेहत जाबी वास्ते अरदास बेनती है संगतां वल्लों। चढ़दियां कला बख्शनियां इस वेले बख्शिया खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद दी देग सज के हाजिर है।
ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਜ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸ਼ਕੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ

अमृत सार बिखेरे खाए माया मोह परम कुले सुत इत उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मलंत जम त्रास मिटाई अरदास पाठ कीरत की।

हरे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहर कछ न बिचारे नाम रतन जन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजहरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस

पांच तत् को तन रचियो जानो चतर सजान जहते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मानो।

जय कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत।

संग सखा सब तज गए को नन बिहो साथ कहो नानक ए बिपत मैं एक मैं टेक एक रघुनाथ संक

पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो जेको खावै जेको पुंचै तिसका हुए उधारो एह वहत तजी न जाई नित नित

दसाख सुनावह बंगालम मद माधव गावह बंगालम मद माधव गावह ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भांत अट पुत्र।

कौशक संग लाई मारू माते अंग मेवारा प्रबल चंड कौशिक उभारा खोखट्यो पोरा नद गाए आठमाल कौशक संग लाए पुनिया यू हिंडोल पांच नार संग अष्ट सौ

सलामत निरंकार। संघ जापा संघ भाव संघ पूजा संघ तप ताव संघ ग्रंथ मुख वेद पाठ संघ जोग मन रहे उदास हो संघ भगत गुण ज्ञान विचार संघ सदी संघ दातार असंख सूरमोह भक सार असंख मुण लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड दत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े अर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो संख सिर भार होए अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बाण अखरां सिर संजोग बखाण जिने लिखे ते सरनाहे जे फरमाए ते उते पाहे जेता कीता तेता ना उबरनावे नाही को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। परी आए हाथ पैर तन दे पानी तो ते उतर सखे मुद पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ धोए परी आए मत पापा कै संग तो फैनावे कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे खाहो नानक हुकमी आव जाहो तीर्थ तप दयादत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर गद तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आद बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सुरति माहो कवन जित हुआ कार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण भगत न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरणी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जा का हो वै नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है पातालां पाताल लख आगासा आगास ओड़ कोड़ कपाल थके वेद कह निकवात सैस अठारे कनक ते बांसलू एक धात लेखा होए ता लिखी आए लेख होए विनाश नानक वड्डा आखी आए आपे जाने आप सलाही सो लाए ती सुरत ना पाईया नदियां ते वाह पवै समुंद ना जानी है समुंद सा सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे अंत ना सिवती कह नंत अंत ना करणे दे नंत अंत ना वेखण सुन नंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारा वार अंत कारण के ते बिल लाहे ता के अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोहे बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे उपरी ऊंचा ना होए बड़ूचा होवे कोहे ते सूचे को जाने सोए जे वड़े आप जाने आपे आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए त्या गणत नहीं विचार केते खब टुटे बेकार केते ले ले मुकर पाहे केते मूर्खा ही खाहे केतिया दूख सदमार वे पे दातरी दातार बंद कलासी भाने होए राख न सके

वापारी अमुल भंडार। अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल भाए मुला संभाहे अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल प्रवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फरमान। अमुल अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करे बख्याण आख है ब्रह्म आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख ईश्वर आख है सिद्ध आख है किते किते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुर जन सेव किते आख है आखन पाहे किते कहे कहे उठड़ जाहे ते किते होर करे ताख न सके कई के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक जाने साचा।

सोदर किया सो घर किया जित वै सर्व संभाले वाजे नादे अनेक संखा केते वावन हारे केते राग भरी स्यों कईन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पणी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे है चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे है ईश्वर ब्रह्मा देवी सौन सदा सुवारे गावे है देव दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे है मोनी आमन मोहन सुरगा मज प्याले गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे है जोत मां बलसूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे सही तुदनों गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले उर के ते गावन से मैं चेतन आवन नानक्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सीजाए न जासी रचना जिनर चाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जेने उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पात साहो आपात साहिब नानक रह नर जाई मुंदा संतोष सरम पत झोली ध्यान की करे बेभूत किंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जांकी रिद सिद अवरा साध संजोग वंजोग दे कारज लावे लिखे आवे भाग आदे तिसे आदेश आद नील अनाद नाथ जुग जुग एको वेस एका माई जुगत आई तन चेले प्रवान एक संसार एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावे तिवे चुलावे जिव होवे फरमान ओ वेखे ओना नदर न आवे बहुता एहो वडान आदे तिसे आदेश आद नील अनाद नाथ जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका

धरती रहे सचा नाम मेरा दारू साच नाम उदार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख माने आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया वडिया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा दारू वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक

अनास सुने सासन तो ग्यान सुने अर्चरका सुनान सुने पड़ पड़ पावे मान सुने लागे सहित्या नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाव का नास सुने सरा गुणा के गाह सुने सिख पीर पातशाह सुने दे पावे राहु सुने हाथ वेस गाह नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाव का नास मने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पिछताए कागद कलम न लिखन हार मने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने सुरत वे मन बुद्ध मनै सगल भवन की सुध मनै मोचोटा ना खाए मनै जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मनै मार्ग ठाक न पाए मनै पथ स्यों प्रगट जाए मनै मग न चले पंथ मनै धर्म सिद्धि संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने पावे मुख द्वार मने परवारे साधार मने तरे तारे गुरु सिख मने नानक पवे ना भेखे ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जन सूत जे को बुझे होवे सुचार तवले उपर केता भार तरती होर परे होर होर तिस्ते भार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले रूप के तीदार जाने कौन कूद कीता पसाओ एको को वाव तिस्ते होए लख दरियाव कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ संख पूजा संख तप ताओ संख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलवड़ त्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो संख सिर भारो अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सर संजोग बखान जिन्हें लिखे ते सरनाए जे फुरमाए ते ते पाहे जेता कीता तेता नाव वरनावे नाही को थाव कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ धोए भरिए मत पापा कै सांगो तो पहनावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुकमी आवो जाहो तीर तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाउ अंतर गत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन

पायो कादिया जे लिखण लेख कुरान तिथ वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिरटी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सुलाही क्यों वरनी किव जाना नानके आखण सब को आख एक दू एक सियाण वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक जे को आपू जाने अगे ज्ञाना सो है पाताला पाताल लाखे आगा सायागा सोड़ कोड़ कपाल थके वेद कहनिक वात सह से उठारे कणक देबा असलू एक धात लेखा होए तां लिखिए लिखे होए बनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे ती सुरत न पाई आ नदियां ते वाहा पवे समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुल न हो बनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिवती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब उच्चा था उचे ऊपर उच्चा ना हो ए वड़ी उच्चा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल नांत माए केते मंगे जो दे अपार केत्या गणत नहीं विचार केते खब टुटे विकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर खाही खाहे केत्या दू भू सद मारे।

कीते बुद्ध। आख है दानव, आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, किते आख है आखण पाहे, किते कह कहे उठ उठ जाहे। एते कीते होर करह ताख न सके केई के, जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित वै सर्ब संभाले, वाजे ना दे अनेक असंखा, किते वावन हारे। केते राग परे स्यों कहियन, केते गावन हारे। गावे तुहनो पौन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म दुवारे। गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गाव है ईसर ब्रह्मा देवी सौन सदा सुवारे। गाव है इंद इंदासन बैठे देवत्या अंदर नालय। गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी, गाव है वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले, गावन रत्न उपाए तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे। से तुदनो गावे जो तुद भावन रते, तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चेतन आवन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा, साची नाई है पीहो सी जाए न जासी। रचना जी नरचाई रंगी रंगी पाती, कर कर जिनसी माया जिन्य पाई। कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई।

आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धां की सोध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे।